दिल्लीले ल्यायो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्ष को वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट ईएमआई, नागरिकता भए पुग्छ, हरेक घरको खुशी, घर घरमा एलजी, एलजी लाइफ गुड।

0: आवाज विहीन को आवाज परिवर्तन को संवाहक रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz।
1: यो हो महासंचार नेटवर्क समय को आवाज।